0: मतलब ऐसे ही था यार, इट वाज बेसिकली रिवीजन ऑफ द नोट्स दैट आई प्रिपेयर्ड.
1: लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पुणे एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी फील्ड में आना चाहते हैं,

0: वाह मी उन दोली गेंद की आलावा दो
1: दे दे जब कभी भी इधर नार नार दो है
2: जब कभी भी सुनो कि गीत मेरी
0: आज दम इसी फवनी उन दो या एक बार एक खलाड़ो आह दुरुंगन ना गोई आह
1: आधे मी हर में ना किया दे येरो एक आम आधे हिन तिपुना हिन लमो किया रो ना माँ फील का किया नेंगे साल इधे इन्द शिया गिन्ने स्टाइल देंगे हम लवा अगर ना हम बुनाशे बुनाया रा आप उधर लवा जस्सा ल दे नो शिया
0: आधे
1: डाको नेंगे के येरो मुड़े खसनो जे हाँ हम ये खाशवर वांटा लवा की को बैक
2: Okay.
1: Bye.

0: ये गाना, ये गाना तुमने क्यों गाया?
1: अच्छा नहीं लगा।
0: अच्छा लगा? बहुत दर्द है, जैसे अपना ही दर्द। सुनते ऐसा लगा
1: जैसे पहले कभी सुना था।
0: नहीं, जैसे किसी ने फिर से पुराने जख्म को कुरेद दिया, दर्द फिर से उभर आया। फिर गाओ, फिर गाओ।

0: एहारा निहार, एहारा मिहार।
1: नोदी एकम मेगाहर्ट्ज दिवे एफएम दिवे हिंगे मुनिफुए फिलुआ दिर्मगा अबदुस।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: दिव्य एफएम 91.1 मेगाहर्ट्ज़ दिव्य हिंग मुनिफु फिलवा दिनों मुगा अबदुस।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।